सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हो सवाल के, संस्कार नहीं मिलते हैं तो भारी होते, तो बाप समझते हैं
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Und er

आजकल के सब सिंगर।

Bobby. Monster-sentit warna vibration-cicernya.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं यार, अपन ने भाग्य का सितारा सदा चमका दे रहना, क्योंकि इस जन्म का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ, अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाले। इसलिए हिम्मत कभी नहीं यार, बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है, बात आती है और चली जाती है, जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपना ही तकदीर नहीं कमा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्राह्मणों का काम क्या है? शोक लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचती है, पाप की महिमा की ऑटोमेटिक मीठे मीठे दिल गीत गाती। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है क्या? है मुश्किल नहीं ना? मुश्किल किसको लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो, गाओ, सहजे ना, सहजे कान तो हिलाओ, सहजे मुश्किल तो नहीं है ना? जान बूझ के सहज से हट कर मुश्किल में चले जाते हो। है मुश्किल नहीं? बहुत सहज, क्योंकि बाप जानते हैं आधा कलम मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज कोई है मुश्किल वाला? आप पीछे वाले मुश्किल लगता है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना? ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना, झगड़ना। वो तो मुश्किल ही होगा ना? युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

is.

कुछ सा।

0: Shake Polly Monsavata Pie Lincoln Monsa Shakti
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो का दूर भी बैठे हो सकेंगे, टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है तो वर्तमान समय

叫，这是叫，非是。इसलिए कहावत है मन जीते जगत जीत, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है जहां जाओ, जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय।

యొక్క ఫైనల్ రిజల్ట్ కి పెళ్ళే బీచ్ బీచ్ మే పేపర్ లియే జాతే तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको एक सेकंड में स्वीट साइलेंस के अनुभूति में खो जाओ क्योंकि साइंस और साइलेंस science fair.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Πεζίρακο. Τσάι μαντσά σε βασέ. Τσάι φάτσα σε. Τσάι μανατσιακτή με πεζίρακο. Manan Shakti Manako Ika kar bana deti Koi koi bache manan chak karte bhi Lekin manan Shakti ko bhi saare din mein bada को लास्ट बच्चे से भी प्यार लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते कि साथ चले पीछे पीछे नहीं रह जाए तो क्या करेंगे अटेंशन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहां है खुशियों का संगम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: फ्रिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती, एक तो देहबान, वो तो नेचुरल सबको अनुभव है 63 जन्म का, फिर देहबान प्रकट हो जाता है, और दूसरा है देह अपमान। देहबान और देह अपमान ज्ञान में जितना आगे जाती है फिर से इशारा दे रहा है, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाए। अपनी चेकिंग करो, सूक्ष्म रूप में भी लगाओ, कोई विशेषता या अपने या और किसकी अपमान बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाए। दिल खुश, चेहरा खुश, चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते। दिल खुश की बजाय दिल शिकस्त, तो समझा संगम युग के लास्ट स्टेज फरिश्ते बन के संस्कार इमर्ज करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दुनिया के हालतों को देखते हुए अब अपने सुख देते।

Mustard.

Some.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानते। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते, अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो समय ये

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है। तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता है? गंभीर बनो, लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा उसे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है सफल करो सफल बनो, जो भी खजाने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

savoir.

Satava.

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देख

शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं। मैं कौन बाबा?

0: az vállásabb játraknak. Akár kapé múlt a fóda vállásabb.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप की दृष्टि वृत्ति में हर बच्चे के लिए मन में आता है ना कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वो शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान तो जो मन में संकल्प रहता है ये हो,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस पहले स्मृति से

Шатера. Yeah.

Ця правда одє. Ваят. Карни не парти лекен. Shabd ne mera.

0: इस्तेमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए, जो परमात्म पालना सारे कलप में एक बार मिलती है, आत्माएं और देवात्माएं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ जन्म के लिए मिलती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा होगा।

जी। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी पाप की देन, तो अविनाशी पाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सबकी बातें कहाँ गई?

समय भी
सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्मा को इच्छाओं से बचाओ, सभी पाप के साथ ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बैठ, पाप के साथ ये सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि तो वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना, तो बस अभी परम धाम में पाप के साथ बैठ जाओ, वहां से रैम का वायु

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब 9 लाख आएंगे तो साधन स्वतः ही जुट जाएंगे। घबराओ नहीं, हाल बनाना पड़ेगा। देखो भविष्य बहुत बहुत उज्ज्वल है। सब साधन मिल जाएंगे, बने बनाए हाल आपको मिलेंगे। बनाने नहीं, सिर्फ जो इस वर्ष का स्लोगन दिया है ना, सफल करो, सफलता।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखे सबसे बड़ा पेपर ऐसे वायुमंडल अचानक, और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही, और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेला है, छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
3: भाइयों को बुला रहे हैं,
2: दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ, जो लक्ष्य रखे दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन, ऐसा वर्तक के स्वरूप देख, फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

some.

Stop.

0: सिर्फ चांस मिले सेवा का, ये नहीं सोचो चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चाहना बढ़ेगी। कुछ मिले इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जमा

0: उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना, जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जवाब
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं। सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चाहिए

0: assim. इशारा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sss.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने जैसे नैनों में पवित्रता की झलक
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले खजाने के तीन खाते जमा करो ये पहले बताए, तो रिजल्ट में क्या देखा? तीन खाते कौन से है वो तो याद होगा।

और

pavio. Oh.

Freddy. A baby. सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। बाप को भी हर बच्चा प्यारा है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है, आप बच्चे। एक है कितना प्यारा है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यार है।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जाती है

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबसे बड़े ते बड़ी स्थिति है संतुष्टता की, सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते, बाप को तो प्रिय है सदा संतुष्टता, वही रह सकते जिसको सर्व से पूछ। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेड के पर्दे पर मिकी माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिकी माउस का खेल देख मनोरंजन करते। माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मिकी माउस के रूप में

लवी। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे, जीवन में रहते पुरानी दुनिया में रहते तमोगुणी वायुमंडल में रहते ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माए दुख से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो, जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो, जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल प्राप्ति। जय व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करती है, नेगेटिव भी आती है, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त न्यारी और बाप की प्यारी रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

Tja, Nanny.

Yogi, but...

See?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो सोचो, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा चाहे सभी

किसी भी परिस्थिति में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई कोई बच्ची कहती है, बाप ने तो सर्वशक्तियां दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाती है, फिर आती। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी, सर्वशक्तिवान के स्मृति के सीट पर नहीं होते हो, कोई भी किसका आर्डर मानते हैं तो सीट वाले का आर्डर मानते। कोई भी शक्ति का आर्डर करते हो,

0: मास्टर सर्वशक्तिवान बने। तो इतनी पावरफुल
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्वयं को

0: वर्तनी आत्मा बन जाते। रूहानी कर्म सेज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराती है। दूसरों को भी कर्म योगी बनाने की सैंपल बन जाते। जो भी उनके संपर्क में आती है वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा सुनो, पापा और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, बाप कहते हैं रोब क्यों किया, कहती है मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया, किया नहीं कराया गया मुझे। अभी बाप क्या कहे, फिर क्या कहती है, अगर आप भी होते ना तो आप

अभी माफ कर रही है लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे थे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा भी देख रहे थे कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना क्या समय की पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रत तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए पूछो, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। फिर दीवाला होगा।

longue marche. Moitié des nains. Coïté naïdé. Léken moitié tatabana. Kisi bhi sanskar ke vach. उस आत्मा को मुझे सहयोग देना तो किसी का भी हाथ का संस्कार

si tatapan. Abi, imar cicai, mana me bavna tohe. Sí.

Ese es lo que me...

0: 死了，什么给不干的，大大不能，我不是呆毛的，啥的不需要你，俺的毛给。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको लेना दे सकते। हमारा बाप आया, आपको मालूम पड़ा हमारा बाप है, जो सब किसी को भी बेच के कम से कम पता तो पड़े कि हम सबका बाप आया है।
1: See you.
0: pecho. Dijeron, hola. Será.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Sí.
1: Meta atmayo.

is sad. Para dame. Shaktivan Pan.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी इसमें तो बात कि सबके दिल में बाबा की याद कभी भूल भी जाती है, कोई हिसाब किताब के कार। लेकिन मैं जा रही थी थोड़ा भूलती है, मेरा बाबा ये जिगर से इतना पक्का हो गया जो चलते फिरते सब करते। मेरा बाबा मेरा ये भूलता नहीं। और बाप को भी क्या याद रहता मेरे बच्चे, रहता है ना सबके दिल में को।

अभी किसको करते हैं? साकार में क्या दिखाई देता है? बाप के दिल में मैं, अब मेरे दिल में बाप। ऐसे है ना, हाथ उठाओ। ऐसे पक्का है? वैसे कहते काम काज करते भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ

0: और बाप के दिल में कौन मेरे बच्चे। ये संबंध संगम युग की सौगात।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संस्कार परिवर्तन, फ्रिश्ता संस्कार।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Yay.

Ciao.

0: से पूछो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं। क्योंकि पाप से दिल का स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते। क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सुनई पाप का सुनई, परिवार का सुनई सुतई बन जाता। क्योंकि पाप समान है ना, तो पाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को सने के फिरती से देखते। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसा एक दो को सहयोगी बनाओ जो सभी मास्टर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

C'est ça.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है तो यही कहना, दीवार पुरुषा रहती हूँ। ठीक है, सभी को मंजूर है, मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा।

0: pode nai samek pokar divar pujar ti baba to sabi bachcho ko
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना, नजदीक भी नहीं आ सकते।

साथ सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा टीचर साहब, उठो। अच्छा टीचर साहब भी स्वयं भी सफल करो और सफल
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते हैं, अभी अभी देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में स्वराज के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में दो तीन मिनट के लिए राजाधिकारी की सीट पर सेट

0: अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी बच्चों को

ऐसे चारों ओर के परिस्थितियों के बीच में

समय पर आप अपने मनबुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति केंद्रल समय पर करके देखिए। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चल

estetica. A pias par attention kichwana chet. Kyunke prakriti apne bina bina rang dikhane shuru kar diye. Janwar kya kya ho raha hai wo aap sab zyada jante aise मंदबुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही है तो अभी ये प्रैक्टिस करो. Anak.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। कमी किस बात की है तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने सुनाया कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कमा। दूसरों की बातें याद करते ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाता तो फुल स्टॉप नहीं लगता लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी। और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती, तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी इसलिए।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Superbafta, Shubhkamna, Dwara, Bab Dwara Prapt, Hue, Girnau Dwara, Sahara Banu. सहयोग देते हैं ना तो नामी ऐसे योग श्रेष्ठ योग वही साधन है निश्चित है तो करते हो ना ऐसे अपने कार्य परमान ये मनसा सेवा भी अभी के समय परमान अति आवश्यक है तो समय निकालो रैम दिल बनो कल्याण गाड़ी बनो आपका स्वमान क्या है विश्व का

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

are sitting alone. Exercise, girl.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़ती है। इसलिए अपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार। उसके आया

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीन रूपों से जाते

0: अवश्यमे विश्वराज अधिकारी और द्वापर से कलयुग अंत तक पूछे पूजन के अधिकारी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: डबल विदेशी परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जो सफाई और सच्चाई में दिल साफ और सच्ची दिल वो बच्चे चाहे कितना भी दूर हो लेकिन सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते इसलिए इस विशेषता को सदाई सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना ये समय पाने का बहुत सहज साधन वैसे तो सभी के लिए भारतवासियों के लिए भी लेकिन डबल विदेशों में मेजॉरिटी में ये विशेषता है। आप इसी विशेषता को अपने में भी बढ़ाओ और बढ़ाते समय आते समान बने
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्ची लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहां कहां तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझती है कि चतुराई से चलना पड़ता है। तो चतुराई क्या है ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलती है और ब्राह्मण रायल भाषा में कहती है, मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप
2: Yes.
1: ध्यान करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है, लेकिन बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता से ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे जाते हम कुछ चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा, इसलिए चतुराई से नहीं चलो, इस को देख करके भी कभी करती है, ये ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे रह गए, लेकिन रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है, पाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे, चाहे पीछे दिखाई भी Sorry. कर्म की प्रारंभ उतने मिलते। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की बीज डाला फिर बड़ा किया फल भी निकला लेकिन कच्चा फल खा के हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाए तो अलग काल के के लिए काफी नहीं करो यहां नाम नहीं है लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहां है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

beat.

하소서.

Oh.

亲亲，我姐妹，阿拉被你们没抱得的，一头大爷，一头真大爷，真里头什么真的，把这大光下的。Awesome.

0: tutto attenzione. Gente pura di odiena. Tu dica che
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्रह्मांड परिवार की, सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जलसा सदा कायम रहे इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंगोत्साह सेकंड की दृष्टि से भी प्राप्त हो। क्योंकि आप सभी मास्टर चाहे सने ले जाए चाहे सहयोग ले जाए चाहे हिम्मत ले जाए चाहे उमंग ले जाए कुछ न कुछ ले जावे। क्योंकि दाता के बच्चे से तो सभी का काम ये है, कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है खाली हाथ नहीं जाए। चलो दृष्टि का कुछ ले सकते।

Yeah.

0: सभी की भ्रमण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Bye.

Jimmy Valley.

कौन बने और बच्चों

Mercy.

0: बच्चों को वरदान में प्राप्त।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करे वो करे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, जो पाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता, आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यहाँ। तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: It is.

Ciao.

Peace.

Шарат, кит на сети.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप तो खुश रहते

0: 5G.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Looking Jedi.

Peace.

juga menari padam atma.

उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए इस दिन। बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता, दिन में विशेषता धारण। जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे दे दे दे पाप समान बन जाना ही है।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू शुरू करेंगे, तब साक्षात का शुरू हो जाएगा।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से अलचल में आते हैं, उसका कारण सिर्फ तीन बातें मुख्य है। वही तीन बातें बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती। वो तीन बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना। अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और किसका रिजल्ट में देखा तो बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये तीन बातें सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से देने चाहते हैं। तैयार है? तैयार है? सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया न क्या करें। दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो मुख पर। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्यों बाप दादा को बच्चों से प्यार रहना तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय ये सोचते के साकार में जाके इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार ही निराकार है। बिल्कुल सभी नहीं।

रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब ये दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए, एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं। ये दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए, जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। ये धीरे धीरे अभी कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा, धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए, एक तो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होगे कहीं कि ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते ही है कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते, सुनने आते हैं, समझने लगे, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। ये तो विशेष बातें हैं, इससे ये सिद्ध हो सकते हैं कि इनको ये सिखाने वाला को तो ऐसा पुरुषार्थ करो सिद्ध हो जाए कि कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाली।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है कि एक लाइफ टाइम्स का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं बड़ा होता। सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उनकी करानी चाहिए, नस्तिक आते जाए। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा सुना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
2: जी। बच्ची को चक्कर लगाए तो कहाँ कहाँ रही है, लेकिन बाप दादा I love you.

top.

خوشی.

0: उसके लिए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चे

0: Sunny. Bola Nath Bab, Sachi Dil Bar, Bahut Sahaj Raasi Ho Jate. Jab Bola Nath Raasi, To Dharam Raj Kasi, Aankh Bhi Nahi Utha Sakte. ऐसे बाप के प्यारे लेकिन सिर्फ चेक करना कोई सने
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: प्रलोभन ये नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की व स्पीकर अच्छे बनने की व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की ये प्रलोभन नहीं है, ये तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रलोभन है जीवन मुक्त की, कोई बंधन नहीं। पुरुषार्थ की प्रलोभन जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं, कि अभी

0: मास्टर सर्व शक्ति।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो उसके प्रत भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वमान के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं। दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराक से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले है, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संगतोष में बहुत आते, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संकटोष में नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संकटोष में आ जाते हैं टेम्पटेशन है, संकटोष में नहीं हो। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं है, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहते आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते, तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को, पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिया तरस पड़ता।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय अनुसार तीवर पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ सेकंड में बिंदी लगाना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप में तो

Sano Kid.

时间，sorry，क्यों अगर सुबह नीचे नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते सुबह Yeah.

0: geçirdi. Açgır. Kisi ko bhi koi. Title milte. To wo bhi. Apna bhagya. Samajhte. Lekin. Aap bachcho.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय सुदय बंजत ब्रह्मा बाप को देखा आदिदेव होते हुए ड्रामा के फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया अपने से भी सिक्स।

0: சர்வகுண சம்பன் பண்ணா சேஜ் ஜெயதேவ்
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नहीं सही

0: सेंटर सेवा अस्ता ज्वालामुखी योग का वेब्रेशन और टेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। तभी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाए के तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चीकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सुख्यम चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सुख्यम चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा अपने

0: शरद हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी शरद में थकावट अनुभव होती है, बाप दादा देखते हैं, लेकिन स्वयं शरद पे तीवर रहने वाले औरों को भी शरद पे आगे बढ़ाओ, वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले, पढ़ाते भी चले, क्योंकि एक दो के साथी होना तो सबके प्रति भावना के आधार से बढ़ाते चलो, उमंग उल्लास अपने अनुभव
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

家。

Beats.

chaotic. अपने को लक्ष्य रख

want

Happy.

verdadero.

0: चाय सेवा केंद्र, चाय स्वयं, कहाँ भी रहते स्वयं को निर्विघ्न
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बोल पे निर्माण बनो, बोल पे निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलती है, समझती है, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य % अपमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, संबंध संपर्क में, ऐसे नहीं तीन बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं तो क्या हुआ, लेकिन वो एक कमी पाश्विता नर होने नहीं देगी। निर्माण ताई मान झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे ऐसे कह देते हंसी में, क्या मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके। लेकिन झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरहंकारी सुतह बना दे। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: थक और नहीं, जैसा मैं थकाट फील हो ना, तो कहां भी जाके डांस शुरू कर दो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

0: Katina. Bonanimi. Come to you.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

Psst.

इस कभी कभी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Prepara.

そっか。

कोई ना कोई बात में पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिल शिकस्त Sure.

necesito un abalón coqueteo.

Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Abby. Falo per mamma. Capibi. Cuci piove. Coi. Questa notte.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बना, खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अड़चन नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा, बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएगी, दिल शिकस्त नहीं हो, योग श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ, करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी जो आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पांव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पांव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे, जो आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: को पूर्ण करने वाले

और दीदी के ये बहुत

पहुंचना चाहिए। बार बार अब घर चलना है तो धुन लगा।

0: Choco, holy kimabarak.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, किया कि कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं है। जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना, इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। समर्पित होती है हद कम में और मेरे में, वो जन्म जन्म फर्से के अधिकारी बन जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ, ये बाप दादा को अचल। तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना, सभी सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके, इसके कारण सोन बना है। बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के रहेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी दृढ़।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Bavan. The rolling Bavan. Give Malik.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Ciao.

喜欢你。

Graham.

Peace.

स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे

sit up.

0: Chop Joe. Jesse Joe. Chop Duck Joe. Top Duck. Monaco. Icagar. Corsac.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार, तो कभी अपने को निराकार बाप समान, निराकार
2: हो सकता है।

सभी

0: के 24 घंटे और 24 बार करना, नींद नींद के टाइम नींद भले करो। बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो लेकिन दिन में भराओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: भी फानी और वत्सल

Jimmy Rod.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि बड़ी इतना बड़ी परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं। वाह, फॉलोअर या परिवार, परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय होती हूँ चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होगा। माला में देखो कहा एक नंबर और कहा 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में एक परिवार एक बाप एक राज तो एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है। क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है, लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है। लेकिन यहाँ धर्म और राज दोनों की स्थापना सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता है उनका सिर्फ धर्म है, राज नहीं। या तो आप सबको राज भी करना है, तो जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा चाहते एक एक बच्चा खुश निमा खुश नसीब दिखाई दे चेहरे से चलन से क्योंकि इसके लिए बाप दादा चाहते हैं कि अभी से लक्ष्य रखो, जैसे अभी ये 75 वर्ष के कारण सबको उमंग ऐसे ही उमंग को चेहरे से सेवा करने का। क्योंकि दिन प्रतिदिन समय
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।